0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం ఇప్పుడు సమయం 6 గంటలు కావస్తోంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో, అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు. ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే అవుతుంది.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాథ్ మే ఫర్హత్ నాజ్. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे. विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे. श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी. श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे. प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई. क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी. बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश

0: मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold bilateral meeting with U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues, including issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting. He called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Modi asserted that India and the

0: స్తుతిమాల క్రీస్తు భక్తిగీతాలను విన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం ఇప్పుడు సమయం 8 గంటలు కావస్తోంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో సమాచార్ ప్రభాత్ ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే వింటారు.
1: మోదీ హర్ పరివార్ కో ఘర్ మే బిజ్లీ బనాకర్ వహీ బిజ్లీ బేచ్కర్ కమాయి కా ఏక్ ఔర్ సాధన్ దేనా చాహతా.
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है. भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं. आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in. हर घर सूर्य घर.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम. विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी. स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे. महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी. होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल. मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की. और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता. अब समाचार विस्तार से. विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे. विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे.
4: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी. बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे. स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा. बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के

0: अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
0: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों

0: के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत

0: दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्य ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with US Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July, Swasthya Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. US President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with US Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
3: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. He shared US perspective on various regional and global issues including the

0: చిత్రసీమ కార్యక్రమంలో ఫిలిం గీతాలు మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. సమయం 12:00. ఇప్పుడు వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ నుండి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాథ్ మే కనకలత. विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है. उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही. उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है. उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान हैं. विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल

समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक आठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मोल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिचके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह की सुहानी शुरुआत हो या शाम का सुकून भरा सफर, गीतों, कहानियों, संवादों और मनोरंजन के साथ आकाशवाणी ने हर घर से एक रिश्ता बनाया। मन की बात से लेकर देश के हर कोने तक पहुंचती प्रेरणा की आवाज, जानकारी, संस्कृति और विश्वास का साथी। कोविड हो, सुनामी हो या प्राकृतिक आपदाएं, तब भी एक आवाज हर दिल तक पहुंची, आकाशवाणी। हर बुलेटिन में भरोसा, हर संदेश में जिम्मेदारी, भरोसे की वाणी आकाशवाणी। मीडियम वेव 406.5 मीटर्स अर्थात 738 किलोहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये हैदराबाद केंद्र है। प्रस्तुत है आज का हिंदी कार्यक्रम। आज के ये विशेष हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुनेंगे एक चैट शो जो समर्पित है भारत की उस आवाज को

0: जिसने दशकों तक हर घर, हर गांव और हर दिल से एक अनोखा रिश्ता बनाए रखा। आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष। श्रोताओं, एक समय था जब रेडियो सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। सुबह की शुरुआत आकाशवाणी के समाचार और भजनों से होती थी। गांव के खेतों में काम करते किसान ट्रांसिस्टर लेकर मौसम और खेती की जानकारी सुना करते थे। सिलाई की दुकानों पर दर्जी गीतों और कार्यक्रमों के साथ अपना काम करता था। चाय की टपोरियों में लोग क्रिकेट कमेंट्री और खबरें सुनने के लिए जमा हो जाते थे। घरों में माओं और बहनों के लिए आकाशवाणी एक साथी की तरह था। महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा और घर गृहस्थी से जुड़ी जानकारी आकाशवाणी ने न सिर्फ मनोरंजन दिया बल्कि महिला और युवा लड़कियों को जागरूक और आत्मनिर्भर बनने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी सुखद यात्रा और 90 सालों के इस अनमोल सफर पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है अर्चना जी, ममता जायसवाल जी और सीमा कुमारी, और इस विशेष चैट शो की प्रस्तुति कर रही है सीमा कुमारी। तो आइए यादों, अनुभवों और आकाशवाणी के स्वर्णिम इतिहास से जुड़ी इस खास महफिल का आनंद लीजिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष यानी जन जन की आवाज। आज हम उस गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं जिसने 9 दशक तक देश की संस्कृति, संगीत, साहित्य, समाचार और जन जागरण को घर घर तक पहुँचाया। 1936 से शुरू हुई यह यात्रा आज भी विश्वास, परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम बनी हुई है। इसी विषय पर आज इस परिचर्चा में हमारे आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी सहभागी डॉक्टर अर्चना पांडे जी, जो कि पेशे से DRDO में राजभाषा सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इसके साथ ही साथ वो कवित्री भी हैं और लेखिका भी हैं। हमारी दूसरी जो सहभागी हैं वो हैं ममता कुमारी जायसवाल जी, जो कि पेशे से शिक्षिका और लेखिका हैं। आप दोनों का हमारे आकाशवाणी हैदराबाद में बहुत बहुत स्वागत है।
2: हृदय से धन्यवाद सीमा जी।
1: अभी मतलब हम अपनी परिचर्चा की शुरुआत करें उसके पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर अर्चना पांडे जी जो हैं वो हमारी पहली हैदराबाद की हिंदी, जिसे हम कैजुअल उद्घोषिका कहते हैं, उसके रूप में चुनी गई थी। और ये मुझे लग रहा है कि आज का जो हमारी जो परिचर्चा का विषय है वो उनके लिए काफी उपयुक्त रहेगा, क्योंकि उनके जो संस्मरण है, उनके जो अनुभव है वो हमारे श्रोताओं को काफी जोड़ेंगे और इनको भी अपने पहले के जो अनुभव है उसे, जिसे हम नॉस्टैल्जिया फीलिंग कहते हैं, वो शायद याद दिलाएंगे। अर्चना जी।
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। आदरणीय सुधी जन, मेरे आकाशवाणी परिवार के सभी सदस्य और वो सारे चेहरे जिनको हमने कभी नहीं देखा, लेकिन मैं आप सबसे जुड़ी हुई हूँ, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, आदाब करती हूँ। और साथ ही मेरे साथ हैं ममता जायसवाल जी, आपको भी मैं अपने साथ जोड़ती हूँ। और आज बहुत अच्छा लग रहा है, एक बहुत ही सुखद अनुभव है कि आज सीमा जी ने मुझे इस विषय के लिए आमंत्रित किया कि रेडियो से, आकाशवाणी से जुड़ी मेरी यादें कैसी रही, संस्मरण कैसा रहा और इसको मैं पीछे मुड़कर जब देखती हूँ तो कैसा लगता है। तो बहुत ही मजेदार एक यात्रा रही है और मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। आज एक ऐसा मौका है जब मैं एल्बम के पन्नों को उलट पुलट कर देख रही हूँ और हर चित्र बहुत ही सुंदर लगता है। वो एक जमाना था जब मैं कॉलेज के जमाने की बात है, जब आई थी और आकाशवाणी में जब आई और मुझे स्टूडियो में लाया गया तो ये भारी भरकम दरवाजे मेरे से खुलते नहीं थे और बड़ी कोशिश करके धक्का मार के उसे खोलना पड़ता था। आने के बाद और जब यहाँ यात्रा शुरू हुई तो उसका आनंद अपना था, यहाँ के लोगों से जुड़कर हैदराबाद की सभ्यता, संस्कृति और दक्कन की जो संस्कृति थी, तहजीब थी, उसके साथ जब मिलने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के लोग मुझे मिलते थे, तेलुगु सेक्शन के लोग भी थे, उर्दू सेक्शन के लोग भी थे और हिंदी सेक्शन में तो मेरा चयन हुआ था, और यहाँ पर जितने भी पेक्स थे तो उन सब से मिलके एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा और साथ मिलकर काम करने का एक अवसर मिला। और ये अवसर मेरे लिए बहुत ही, मतलब मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ इस पूरी संस्था को।
1: अर्चना जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं से आपका जो पहला दिन था आकाशवाणी के साथ, चाहे वो आप एक कलाकार के रूप में आई हूँ, चाहे आप उद्घोषिका के रूप में आई हूँ, आप, मैं चाहती हूँ वो संस्मरण जो है वो आप हमारे श्रोताओं से साझा करें।
3: हाँ अवश्य सीमा जी। वो पहला दिन था जब मेरे एक परिचित

0: संगीत की अध्यापिका थी श्रीमती शुभ्रा मोहंतो जी, आज भी हम लोग साथ ही रहते हैं, आसपास में ही रहते हैं, वो मुझे अपने साथ लाई और उन्होंने मुझे कहा कि चलो तुमको मैं आकाशवाणी लिए चलती हूँ। तो मैं जब आई तो पहली बार उन्होंने मुझे प्रसन्ना लक्ष्मी मैडम से मिलवाया, वो उस समय हिंदी के कार्यक्रम देखती थी, और उनसे जब मैं मिली तो बड़ी ही शांत और शालीन टाइप महिला थी, बहुत ही स्नेही महिला थी। उन्होंने बड़े स्नेह से मुझे अपने पास बिठाया और फिर थोड़ी सी बात की, बहुत कम बोलती थी, मृदुभाषी थी, तो मुझसे वो पूछने लगी क्या लिखती हो, तो मैं चुप रही, मुझे समझ नहीं आया क्या बोलूं। फिर वो कही कि अच्छा हिंदी में लिखती हो, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैथिली शरण गुप्त के बारे में कुछ लिखकर दिखाओ, तो मैंने तुरंत लिखा और लिख के उनको दिखाया। उन्होंने पढ़ा, सरसरी नजर से उन्होंने देखा, बोला कि एक बार सुना दो मुझे, तो मैंने सुनाया, बोली कि तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है, चलो रिकॉर्ड करके देखते हैं, और मुझे अपने साथ स्टूडियो में ले आई, रिकॉर्ड किया, और इस तरह से मेरा पहला परिचय हुआ आकाशवाणी से। तो इसके लिए आज इस मौके पर मैं शुभ्रा आंटी को और प्रसन्ना मैडम को, दोनों को ही बहुत धन्यवाद देती हूँ दिल से। और उसी क्रम में ये जो सिलसिला चलता रहा, आज मैं सीमा जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने उस कड़ी को कायम रखा। इन्होंने बहुत सारे कलाकारों को, बल्कि हैदराबाद के सभी वरिष्ठ और विशिष्ट कलाकारों को जोड़ रखा है, जितने भी हिंदी के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और हिंदी हमारी राजभाषा है तो उसका भी प्रचार प्रसार होता है, और साथ ही कलाकारों को एक अवसर भी मिलता है कि वे अपनी बात आम जनता के साथ साझा कर सकें।
1: बिल्कुल जी, अर्चना जी आप आगे बढ़े, इससे पहले मैं ममता जी से बात करना चाहूंगी। ममता जी, आपका जो जीवन काल रहा है उसमें आपने रेडियो और खासकर आकाशवाणी की जब हम बात करते हैं, इसका आपने कल भी देखा है, इसका आप आज भी देख रहे हैं, और भगवान करे कि आपकी उम्र ज्यादा लंबी हो, आप आने वाला कल भी देखेंगे। तो आपको आकाशवाणी की 90 वर्षों की यात्रा को किस प्रकार से आप आकलन करेंगी और किस प्रकार से देखती हैं?
2: आकाशवाणी का है ये, जो हमारे वाल्मर कॉफमैन की जो संगीत से शुरू होता था, ये हमारे जो अभिभावक थे वो सुबह ही रेडियो लगा देते थे और हम लोग सुनते थे। भूले बिसरे गीत उस समय का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम था। फिर उसके बाद उसमें उन्होंने शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को भी जोड़ा था। पूरा 24 घंटे का ये प्रसारण नहीं हुआ करता था, समय से बंधा होता था। फिर उसके बाद हम विद्यालय चले जाते थे, फिर विद्यालय के बाद आने के बाद दोपहर में विद भारती के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम होते थे, सखी सहेली कार्यक्रम। उस सखी सहेली कार्यक्रम में विविध विषयों पर चर्चा होती थी, स्वास्थ्य से संबंधित भी होती थी, और महिलाओं, खासकर उस समय जो बालिका शिक्षा थी, बालिका शिक्षा के लिए उस समय जो एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए था, उस प्लेटफॉर्म को मैंने वहां से प्राप्त किया। तो हम एक ऐसे रूढ़िवादी परिवार में रहते थे जहां पर महिला शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, तो मैं आकाशवाणी को धन्यवाद दूंगी कि उस सखी सहेली कार्यक्रम के द्वारा मैंने अपने अभिभावकों को ये विश्वास दिलाया कि बेटी की शिक्षा बहुत महत्व रखती है।
1: जी बिल्कुल, आपने सखी सहेली की चर्चा की है, तो मैं आना चाहूंगी अर्चना जी के पास। जो देश की सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की जब हम बात करते हैं, सिर्फ मतलब सामाजिक सांस्कृतिक, देखिए आर्थिक विकास तो है ही, जब वो आपका आकाशवाणी किसी को जॉब प्रोवाइड करता है तो ऑब्वियस बात है आर्थिक स्थिति उसकी सुधरती ही है, लेकिन इसका जो सांस्कृतिक विकास का पहलू रहा है वो बहुत मजबूत रहा है। जैसे आपने अभी बताया अपनी बातों में कि आकाशवाणी देश की धड़कन है, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को इसे थोड़ा विस्तार से बताएं कि सांस्कृतिक विकास को आकाशवाणी ने कैसे बढ़ावा दिया है।
2: लोक संगीत,
1: जी बिल्कुल,
2: ललित संगीत
1: जी,
2: कर्नाटक संगीत
1: जी,
2: इसके द्वारा उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। जैसे मैंने कहा, मेरी जो विगत जो बचपन की सारी स्मृतियां हैं वो संगीत से ही जुड़ी हुई है। हम लोग कर्नाटक संगीत को यहाँ पर सुनते थे, और लोक संगीत, लोक गीत जो होते थे, लोक गाथाएं, उन सबको सुनकर मैं आश्चर्य मुग्ध हो जाती थी कि हमारी भारतीय परंपराएं और हमारी संस्कृति इतनी विस्तृत है और हम उनसे अपरिचित रहते यदि आकाशवाणी इन सब पहलुओं को नहीं उजागर करते।
0: बिल्कुल सही कहा ममता जी आपने।
1: मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगी अर्चना जी, पहले आप शुरू करें उसके पहले, कि साहित्य भी उसमें आता है सांस्कृतिक विकास में, सिर्फ संगीत ही नहीं, साहित्य का भी उतना ही स्थान रहा है। जी अर्चना जी।
0: जी बिल्कुल, साहित्यिक जो कार्यक्रम होते हैं जिसमें चाहे परिचर्चा हो, साक्षात्कार हो, रिपोर्टाज हो, या फिर हम लेख है, कविताएं हैं, जो भी समाहित करके और इस मंच से प्रसारित करते हैं या जन जन तक पहुंचाते हैं, लोगों को इसकी आदत लग जाती है। जो कार्यक्रम का समय होता है ठीक उस समय पे लोग अपना रेडियो ऑन करके और प्रतीक्षा करते हैं कि आज क्या नया सुनने

0: को मिलेगा। तो इस तरह से जो पीढ़ी इसके साथ जुड़ी रही है सदियों से, अगर किसी दिन कार्यक्रम ना आए तो उनको एक खालीपन सा महसूस होता है। तो रेडियो ने सबको बहुत अच्छे से एक तार में जोड़ के रखा है।
1: जी, जी, जी। ये मतलब हमने तो ये सुना था कि जब रेडियो सिलोन से बिना का गीत माला बोला जाता था तो उस समय लोग गलियों में दिखाई नहीं देते थे, जैसे दूरदर्शन से रामायण और महाभारत का प्रसारण होते समय लोग नहीं दिखाई देते थे, तो बिना का गीतमाला को ही मतलब एक तरह से अपनी प्रतियोगिता मानते हुए हमारी के सरकार ने जो इसे रोक दिया था, पुनः इसे विविध भारती के रूप में परिचित किया और जनप्रिय आधार उन्होंने तब प्राप्त किया।
0: बिल्कुल ममता जी, एक और बात जोड़ना चाहूंगी कि जो 90 का दशक था उस दौरान रेडियो पर जो कार्यक्रम आते थे उसमें एक सुविधा होती थी कि हम अपने श्रोताओं से संदेश प्राप्त करते थे और उनका नाम उसमें घोषित करते थे। ये बहुत बड़ा रोमांच का विषय होता था और जिसका नाम रेडियो से पुकारा जाता था उसका तो लगता था दिन बन गया, चाहे वो फौजी भाइयों के लिए कोई कार्यक्रम हो या फिर महिलाओं के लिए हो
2: या अलग आपकी फरमाइश हो।
0: आपकी फरमाइश
1: बिल्कुल।
0: तो हम जब कार्यक्रम रिकॉर्ड करते थे युवाणी का
1: जी,
0: तो उसमें भी गीत संगीत का कार्यक्रम शनिवार को जो कार्यक्रम होता था उसमें हम रिकॉर्ड करते थे और उसमें भी फरमाइशें लेते थे और फिर उनका नाम भी हम लोग घोषित करते थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव है जहां बिना देखे आप किसी से जुड़ जाते हैं।
1: ये आपने अपने प्रारंभ में सही कहा, चेहरे से अपरिचित होते हुए हमको लगता है कि हम आत्मा से जुड़ रहे हैं।
0: सही
1: बिल्कुल
0: बात है,
1: सही
0: बिल्कुल
1: बात है। जी।
0: आज भी देखिए, चाहे जितने भी गैजेट आ जाएं, टीवी हो, पॉडकास्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन जो अहमियत आकाशवाणी, जो अहमियत ऑल इंडिया रेडियो रखता है वो शायद कोई नहीं रख सकता है। आज भी हम कहीं भी सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं और कार में तुरंत रेडियो ऑन हो जाता है।
1: सीमा जी, मुझे तो लगता है कि जब जब हम जिस तरह के भावों में होते हैं शायद आकाशवाणी भी उसी भावों से चलता
2: जी,
1: है।
2: जी, मैं इस विषय पे आने ही वाली थी। मुझे आज भी याद है जब हम अपने कॉलेज के दिनों में थे तो मतलब हर गाने से अपनी भावनाओं को कोरिलेट करते थे।
1: जी,
2: चाहे अगर हम सैड हैं, अगर उसमें वो वैसा सॉन्ग आ रहा है तो हम उससे कोरिलेट करते थे। तो मतलब विविध भारती के कार्यक्रम में, आकाशवाणी के कार्यक्रमों ने हमारे जो भावनाएं हैं उनसे अपना जुड़ाव रखा है।
1: जी
2: बिल्कुल, जैसे कि अभी ममता जी आप चर्चा कर रही थी कि चाहे कोई भी युग हो, कोई भी, चाहे वो डिजिटल युग चल रहा हो, जैसे अभी इन्होंने बताया कि पॉडकास्ट का जमाना हो, टीवी का जमाना हो, डिजिटल मीडिया का जमाना हो, आकाशवाणी अपनी उपयोगिता नहीं खो रहा है या फिर इसकी उपयोगिता है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को एक उस उपयोगिता, उस भरोसे की जो वाणी है उसके बारे में बताएं कि ये भरोसा और ये विश्वसनीयता जो है आकाशवाणी ने किस तरह बरकरार रखा।
1: हाँ, ये तो हम लोग ये मान सकते हैं, 1936 में जब इसका परिचय आया तो हम ये मान सकते हैं कि तभी हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था।
2: जी,
1: तो हम ये कह सकते हैं कि आकाशवाणी ने स्वतंत्रता के उस स्वर को अपना स्वर देकर एक राष्ट्रभक्ति की जो लहर चाहिए थी उस लहर को उन्होंने बहुत ही तीव्रता और जन आधार दिया। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जब भी आपदा प्रबंधन होते हैं, फौजी भाई के पास या आम जनता के पास जो सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है वो रेडियो है।
0: बिल्कुल सही कहा आप। इसके चलते आकाशवाणी का और आम जनता का एक बहुत ही मजबूत रिश्ता है और आज 90 साल हो गए हैं इस चीज को, तो आप समझ सकते हैं कि जहां चीजें कुछ दिन नहीं चलती हैं, 90 साल का भरोसा एक बहुत बड़ी मिसाल है।
2: जी,
0: बहुत ही बड़ी
2: बात है। जो आपातकालीन परिस्थितियां रही हैं, खासकर कहीं भूकंप हो, बाढ़ हो या फिर कोरोना जैसी महामारी को ले लीजिए, उस समय जिस तरीके से जन जागरूकता अभियानों को आकाशवाणी ने बढ़ावा दिया है वो काबिले तारीफ तो है ही, लेकिन आम आदमी के नजरों से आप उसको कैसे देखती हैं?
1: देखिए, ये तो बहुत बड़ा, उस समय जैसे आपने कहा ये कोरोना जो महामारी थी उस समय ये इसने जो जनजागरूकता लाई है लोगों के प्रति, जो इंजेक्शन लेने के लिए उस समय कोविशील्ड, कोविड को वैक्सीन, इसके बारे में जो विविध तरह की भ्रांतियां फैल रही थी, तो अफवाहों को रोककर लोगों में एक भरोसा पैदा करना कि इस रोग से कैसा बचा जा सकता है और हम इसको कैसे पार पा सकते हैं, तो जनसाधारण ने जो मीडिया उस समय, जो हम कह सकते हैं जो श्रव्य मीडिया जो था, वो मीडिया इतना सशक्त बन गया था उस समय, उन्होंने जो दूसरे मीडिया थे उस पर ज्यादा भरोसा न करते हुए आकाशवाणी पर ज्यादा भरोसा किया।
2: बिल्कुल,
1: ये हमारे लिए बहुत बड़ी
0: यही तो अर्जित किया है आकाशवाणी ने।
1: जी,
0: लोगों के दिल में एक भरोसा अर्जित किया है।

0: जी, क्योंकि अर्चना जी आकाशवाणी हैदराबाद से खासकर जुड़ी हुई हैं, मैं चाहूंगी कि वो अपनी कुछ स्मृतियों को हमारे साथ शेयर करें, खासकर क्योंकि ये युवावाणी महिला कार्यक्रम सारे कार्यक्रमों से जुड़ी हुई थी
1: जी।
0: तो हाँ
1: सीमा जी, मैंने ज्यादातर युवावाणी कार्यक्रम किया और महिलाओं की परिचर्चाएं आदि भी रिकॉर्ड भी करती थी और उनको फिर रिले भी करते थे। तो ये एक ऐसा दौर था जब मैं भी युवावस्था में थी और जब मैं इस तरह के कार्यक्रम करती थी और जब कॉलेज के बच्चों से बातचीत होती थी, उनके पहले प्यार के बारे में जानने का मौका मिलता था, रोमांटिक गाने लगाने का मौका मिलता था। तो एक और जहां मैं, मुझे लगता था कि वो इन गीतों से जुड़ रहे हैं या फिर उनको ऐसा लगता था कि हमारी कोई बात हो, हमारा कोई संदेश हो जो हमारे मित्र तक रेडियो के माध्यम से पहुंचाया जाए, तो ये सब करने का जो अनुभव था वो बहुत ही सुखद था और एक अच्छी याद हमेशा के लिए दिल में बैठ गई। इसके अलावा कुछ अच्छे कार्यक्रम करने का अवसर भी मिला मुझे। तो एक संस्मरण मैं याद दिलाना चाहूंगी कि द गोल्डन एलिफेंट जो चिल्ड्रन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, तो उसमें करीब 7 दिन तक मुझे लाइव कमेंट्री करने का अवसर मिला
2: निरंतर।
1: और इसके लिए दिन में कार्यक्रम होता था और हम लोग रात भर स्क्रिप्ट में जुड़े रहते थे और एक साथ, चाहे हम लोग हिंदी की स्क्रिप्ट हो, अंग्रेजी की हो, तेलुगु की हो, हम सारे ही एक साथ बैठकर, एक समूह में बैठकर स्क्रिप्ट लिखते थे। रात को 2 बजे 3 बजे तक आकाशवाणी में ही रहते थे और यही हम लोग का आधा घर हो गया था। तो ये सारी यादें ऐसी हैं जो मतलब जिनसे हम कभी दूर नहीं हो सकते हैं, हमने आकाशवाणी को जिया है।
2: बिल्कुल।
1: उसके अलावा एक दो और कार्यक्रम थे जैसे
0: शब्दों से ही चित्रण, जिसे हम कहते हैं
1: जी,
0: शब्दों से चित्रण और कहानी को मूर्तित करना,
1: मूर्ति देना।
0: हाँ,
1: इस कार्यक्रम को करने के लिए नामपली गार्डन था, पब्लिक गार्डन, तो वहां पर जगह जगह स्क्रीनिंग होती थी और बच्चों की फिल्में हम दिन में देखते थे, उसके बाद बैठ के उसकी रिपोर्ट बनाते थे, उसके स्क्रिप्ट लिखते थे, उसका जिस्ट बनाते थे और फिर लाइव हम लोग कमेंट्री किया करते थे। तो ये एक अच्छा अनुभव था। इसके अलावा 3 मई से 26 जुलाई 1999 के दौरान जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, इत्तेफाक से उस समय मेरे पिताजी कारगिल में थे, तो मैं जब आकाशवाणी आती थी तो सभी हमारे जो प्रोग्राम डायरेक्टर्स थे और मेरे सहपाठी थे वो मुझे खोजते रहते थे कि पापा से बात हुई, क्या खबर है, बताओ। तो एक बहुत ही अच्छी उत्सुकता थी और हम कारगिल से संबंधित समाचार पेश कर रहे हैं या खबरें समय समय पर देते रहते थे, तो ये एक बहुत अच्छा तारतम्य था कि मैं डायरेक्टली कभी पिताजी से बात होती थी तो वो सूचना भी ले लेती थी और यहाँ फिर हम सबके लिए एक आनंद का विषय होता था कि हम अपडेट्स दे पाते थे।
2: अर्चना जी, आपने तो जीवन जिया है आकाशवाणी के साथ।
0: मैं आपके पास आना चाहूंगी ममता जी, जो नई पीढ़ी है, क्योंकि देखिए डिजिटल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो नई पीढ़ी जो है वो आकाशवाणी से जुड़ी रहे, इसके लिए आकाशवाणी को क्या पहल करना चाहिए?
2: मुझे लगता है कि अपने स्वरूपों में आकाशवाणी बहुत बेहतर है। जैसे उन्होंने अभी एफएम, जो
0: एफएम रेनबो,
2: एफएम रेनबो, इन सबके माध्यम से अभी भी युवा वर्ग में यही ज्यादा, मतलब एक स्थायी रूप से बोलते हैं ना हम, जिस पर विश्वसनीय एक चैनल, वो युवा वर्ग इसे ही मानता है। और यहाँ पर किसी भी विषय पर हम जो समाचार देते हैं तो ये युवा वर्ग भी ये मानता है कि ये जो होगा ये विश्वसनीय समाचार होगा।
1: एक्चुअली सबको टीआरपी चाहिए, लेकिन आकाशवाणी ने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, जनता ने खुद आगे बढ़ के इसको स्नेह दिया है।
0: जी, मतलब दिल की जो डोर है वो बंधी हुई है,
1: दिल से बंधी एक डोर।
0: जी बिल्कुल सही बात है। देखिए अर्चना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप काफी युवा अवस्था से, मैं बोलूंगी बाल्यावस्था से ही जुड़ी हुई हैं आकाशवाणी से, तो जो ये इसका मोटो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना है वो आज भी कितनी प्रासंगिक है?
1: देखिए आकाशवाणी तो पूरी तरह से बहुजन के लिए ही कार्य कर रहा है, समाज के लिए कार्य कर रहा है, तो ये तो पूरी तरह से चरितार्थ हो रही है ये बात, क्योंकि इन्होंने जो अपना मोटो रखा है ये बिल्कुल सही है और आज भी हर वर्ग को ये केंद्रित करते हुए कार्यक्रम बनाते हैं और कार्यक्रम सूचना जो भी होता है वो सबके सुख के लिए, सबके हित के लिए ही होता है।
0: जी बिल्कुल सही बात है। अभी जब हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि आकाशवाणी के 90 वर्षों की यात्रा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज, और हम सभी महिलाएं ही हैं, तो जैसे ममता जी ने अभी चर्चा की थी कि बालिका शिक्षा सिर्फ शिक्षा ही नहीं, महिलाओं के उत्थान के लिए भी आकाशवाणी ने बहुत सारा काम किया है, तो उस मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है कि आकाशवाणी ने महिलाओं को कितना, मतलब विकसित किया है अपनी इस, जो बोलते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से, वो कैसा रहा है ममता जी?
2: देखिए शिक्षा के दृष्टिकोण से इन्होंने

0: विकसित किया है। मैं ये मानती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उन्होंने भी मतलब इस आकाशवाणी को अपनाया है, जैसे यहाँ पर कृषि विकास के लिए जो यहाँ पर बताया जाता था उसको भी उन्होंने ध्यान से सुना और अपनाया। तो जैसे आज ये हमारा जो श्रव्य दृश्य वाले जो रील बनाकर अपने आप की प्रसिद्धि चाहते हैं, मैं ये मानती हूँ जैसे अर्चना जी ने भी कहा है और हम ये मानते हैं कि आकाशवाणी कभी टीआरपी के पीछे नहीं दौड़ा है, उसने जो कुछ भी किया है वो जमीनी स्तर पे किया है, लोगों का विकास वो उन्होंने मन को पढ़कर मन के भीतर प्रवेश किया है। तो इसीलिए आज जो महिलाएं पढ़ रही हैं या नौकरी कर रही हैं, और आकाशवाणी में तो मुझे लगभग सभी उद्घोषिकाएं जो होती थी वो सारी महिलाएं ही होती थी, तो ये इस कारण क्या होता था कि जब परिवार का कोई भी सदस्य सुनेगा तो उसको यही लगेगा कि महिला विकास करेगी तो उच्च स्तर तक जाएगी। तो ये जो संदेश है प्रारंभ में शायद आकाशवाणी ने ही परिवार को दिया है।
1: जी बिल्कुल सही बात है अर्चना जी।
2: जी बिल्कुल सही कहा, और महिलाओं को ध्यान में रखकर आकाशवाणी ने विभिन्न कार्यक्रम बनाए हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है कि महिलाओं को मानसिक शांति चाहिए, और यहाँ से जो सुगम संगीत का प्रसारण किया जाता है हर भाव से महिलाओं को आकाशवाणी ने जोड़ा है। महिलाएं चाहे रसोई में काम कर रही हों या फिर टेलरिंग का काम कर रही हों, सिलाई कढ़ाई बुनाई कहीं भी रहती हैं, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में एक मधुर संगीत, चाहे खेतों में काम कर रही हैं, बिल्कुल, तो आकाशवाणी ही एकमात्र साधन है जो यत्र तत्र सर्वत्र उपलब्ध था और आगे भी रहेगा, हम ऐसी आशा करते हैं।
1: जी बहुत बहुत अच्छी बात है।
2: मेरी आशा है कि आकाशवाणी जल्दी ही अपना स्वर्णिम शताब्दी वर्ष भी मनाए, सबके दिल में रहे, कभी डांटना कभी सलाह देना कभी पुचकारना, बिल्कुल माँ की तरह, एक बड़ी बहन की तरह, क्योंकि हम कहीं भी रहें, सरहद पर, अस्पताल में, रसोई में, ट्रेन की खिड़की में, दर्जी की दुकान में, फूल वाले की दुकान में, अपना पसंदीदा गीत सुनकर हम तुरंत वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। जानते हैं जब भी कोई छोटा बच्चा माँ से पूछे माँ ये किसकी आवाज है, तो माँ कहे बेटा ये आकाशवाणी है। जय हिंद, जय आकाशवाणी।
1: जी आपके इन्हीं लाइनों के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि आकाशवाणी केवल एक प्रसारण नहीं है बल्कि भारत की भावनाओं, संस्कृतियों और जनमानस की सशक्त अभिव्यक्ति भी है। 90 वर्षों की यह यात्रा, जैसा कि अर्चना जी ने अभी बताया कि हम शताब्दी भी मनाएंगे, इस बात पे और इस यात्रा पे हमें गर्व है, प्रेरणा है, और ये हमें विश्वास से भी भर देती है। आप दोनों अतिथिगण, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और आकाशवाणी हैदराबाद को अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सीमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: तो श्रोताओं, इसी के साथ 90 साल आकाशवाणी के सफर पर आधारित आज का ये विशेष हिंदी चैट शो यहीं समाप्त होता है। हमें आशा है कि आकाशवाणी के स्वर्णिम सफर से जुड़ी ये यादें और बातें आपको पसंद आई होंगी। और अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में सुनिए एक खूबसूरत सा गीत।

फिल्म बैजू बावरा से लिया गया है। इसका संगीत दिया है नौशाद ने। फिल्म का निर्देशक थे विजय भट्ट। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

इसी सुंदर गीत के साथ आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए जयदीप को दीजिए अनुमति, फिर मिलते हैं अगले हिंदी कार्यक्रम में इसी मीटर्स पर। सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद। नमस्कार।

हुकूमत ने सभी भारतीय शहरियों को सलाह दी है कि वो इबोला वायरस के फैलने के पेशेनजर कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान में मजीद नोटिस जारी होने तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। हुकूमत ने इन मुल्कों में रहने वाले या सफर कर रहे भारतीय शहरियों को भी हिदायत दी है कि वो मुकामी हुकाम की तरफ से जारी सेहत आमा की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि भारत में इबोला बीमारी के किसी भी केस की कोई इत्तला नहीं मिली है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज एक रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम अज कम 24 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए। ये धमाका राजधानी क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नज़दीक हुआ। इस धमाका में एक रेलगाड़ी को जुजवी नुकसान पहुंचा जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। इस वाकये के बाद पूरे क्वेटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। शुमाली चीन में एक कोयला कान में हुए एक धमाके से कम अज कम 82 अफराद हलाक हो गए जबकि 2 अफराद लापता बताए जाते हैं। शांक्सी सूबे में ल्यू शेनयू कोयला कान में हुआ ये गैस धमाका चीन में साल 2009 के बाद से अब तक का बदतरीन हादसा है। 125वां फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज पेरिस में शुरू हो रहा है। नोवाक जोकोविच अपना रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने की मुहिम का आगाज करेंगे। भारत की तरफ से मर्दों के डबल्स जुमरे में यूकी भांबरी और न्यूजीलैंड के उनके साथी खिलाड़ी माइकल विनस जोड़ी बनाकर खेलेंगे जबकि एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के अपने साथी खिलाड़ी मार्सेलो डोमिलिनर के साथ जोड़ी बनाकर मुकाबला करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच सहपहर 3:30 बजे शुरू होगा। उधर कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी साझेदारी की अहमियत का इरादा किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की ज़रूरत उजागर की है और कहा है कि तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई अहमियत की हामिल है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया है। मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के दोबारा पोलिंग के वोटों की गिनती में बीजेपी के उम्मीदवार देवांशु पांडा को जबरदस्त सबकत हासिल हो गई है। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: opens against French big server Giovanni Mpetsi Pericard. Night session on court, Philippe Chatrier, second seed and 2024 finalist Alexander Zverev, and seventh seed Taylor Fritz are also among the key men's singles players in action on the opening day. World number one Yannick Sinner will aim for his maiden French Open crown after finishing runner-up to Carlos Alcaraz last year. He will be in action tomorrow. In the women's draw, Coco Gauff will head into the French Open as a defending champion. Meanwhile, world number one Aryna Sabalenka will be aiming to win a first-ever French Open title, having come up second best to Coco Gauff in the final last year. India will also have representation in the men's doubles with top-ranked Indian player Yuki Bhambri partnering New Zealand's Michael Venus, while N. Sriram Balaji teams up with Brazil's Marcelo Demolina. In IPL cricket, the Super Sunday double header will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Mumbai Indians will take on Rajasthan Royals at the Wankhede Stadium in Mumbai at 3:30 p.m. For Rajasthan Royals, it is a must-win game in the pursuit of a playoff berth. For Mumbai Indians, it was one of the most disappointing seasons in the franchise, as they've already been eliminated from IPL 2026. In another clash of the day, Kolkata Knight Riders will face Delhi Capitals at Eden Gardens in Kolkata. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Last night, riding on an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at the Ikana Cricket Stadium in Lucknow. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants, Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. Prav Simran Singh made 69 runs. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and United States reaffirm strength of strategic partnership between the two countries. External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar calls for early trade deal, stresses on diversified energy supplies for the country. U.S. Secretary of State Marco Rubio describes India as one of the United States' most important strategic partners. BJP candidate Debangshu Panda secures massive lead in West Bengal's Faulta Assembly constituency re-polling. Government advises all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan in view of Ebola outbreak. 24 people killed in a blast in a railway track in Quetta in Pakistan's Balochistan province. And in tennis, French Open Grand Slam begins today in Paris. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है अब समाचार विस्तार से विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार ऊर्जा मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है बैठक में हमने पश्चिम एशिया मध्य पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की
1: उन्होंने कहा कि दोनों

0: दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान है। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि आधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ. जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं, और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
0: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बाद नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमरीकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी @90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियोंग

के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी कर्सियोंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22

0: इसी के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का

0: स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमरीका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमरीका से हटाने का फैसला ईरान, अमरीका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी हैदराबाद केंद्रम।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहाँ इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 3rd ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निशित कुमार।

0: చిత్రసీమలో ఇంతవరకు సినీ గీతాలను ఆస్వాదించారు. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 8:45 కావస్తోంది. మరికొద్దిసేపట్లో సమాచార సంధ్య ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ సంధ్యా కే సాథ్ మై జయా భారతి. भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया. पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की. तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त. पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया. सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया. कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की. देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित. अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी. और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते. अब समाचार विस्तार से. विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की. दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया. डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए.
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है. भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है. हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है. शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं.
1: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं. उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती

0: अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है।

0: AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके

0: के इस समय भीषण लू की चपेट में है।
1: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1,00,000 votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy, trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
3: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
2: On the Iran conflict, Mr. Jaishankar said both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce.

0: नमस्कार
1: ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरूशंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाली विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरूशंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगाशंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरूशंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरूशंकर भट्टाचार्य उस समय के बंबई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्मभूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरूशंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हौरूशंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हौरूशंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रोशांतो दे रॉय।
2: In the Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha tonight, we present Sitar Recital by Pandit Harishankar Bhattacharya. Born in a distinguished musical family of accomplished musicians, where his grandfather, the renowned Sitarya, Sri Lal Mohan Bhattacharya, is said to have laid the foundation of this rich legacy, and Pandit Harishankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father, Sri Gangashankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Muralidas Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Harishankar Bhattacharya moved to Bombay, present-day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro, Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top-grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Harishankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Zafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council

0: for Cultural Relations, Pandit Harushankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Harushankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
1: पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य सितार वादन की इस प्रस्तुति का आरंभ राग दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
0: पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी, बिगिनिंग विद आलाप एंड जोड़। द कंपोजिशन ऑफ द राग is set to gat in vilambit teen tal, followed by madhyalaya teen tal.

0: जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग दरबारी ऑन द सितार बाय पंडित हरशंकर भट्टाचार्य। He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट।

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छाया नट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य कंक्लूड्स हिज प्रेजेंटेशन विथ राग जिला काफी बिगिनिंग विथ आलाप। The composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Teen Taal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबली पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू राग जिला काफी इन द सितार रिसाइटल बाय पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय प्रशांत दे रॉय।
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए।